नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरुला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवा

रानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे

0: अमरीका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी डिटेल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससीसी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज

0: सेक्रेटरिएट नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर B.R. अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री V.D. सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
2: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति M. पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
3: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को

0: 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम, 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद NTA ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्य ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। झारखंड गवर्नमेंट कैंसल्स JSSC CGL एग्जामिनेशन आफ्टर 24-डे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। ऑल्सो कैंसल्स ऑल अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द प्राइवेट एजेंसी TDPL। US President Donald Trump praises India's voter ID system, hails it as a model for stricter US election rules. India to host 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Indian Army Chief General Dhiraj Seth conferred rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podel in Kathmandu. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Jharkhand today and Ayush Shetty stuns world number one and defending champion Shi Yu Qi in first round of men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by the private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. We have a report.
4: The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at the Jaipal Singh Munda Stadium, who celebrated by distributing sweets and applying gulal. The government has also decided to investigate recruitment processes conducted by JPSC and JSSC from 2014 onwards and constitute a committee headed by IAS officer Amitabh Kaushal to recommend reforms in the examination system. Meanwhile, Minister Deepika Pandey Singh and Health Minister Irfan Ansari, along with MLA Jairam Kumar, visited Sadar Hospital and ended the hunger strike of Devendranath Mehto and other protesting students by offering them juice. Devendranath Mehto thanked the government and said the decision addressed major demands with the JPSC-JSSC Nyay Munch announcing that it was suspending its agitation for now. Student leader Ravindra Paswan thanked the government for the decision but said the reform munch would continue its agitation until a CBI probe is ordered into the alleged irregularities. The government's decision has also triggered protests among candidates already appointed through the JSSC CGL examination, with several selected candidates gathering outside Project Bhavan in Ranchi and expressing concerns over their jobs in future. The reform munch is expected to announce its detailed position and future course of action today, particularly on the demand for a CBI probe. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
3: US President Donald Trump has praised India's voter ID card system and hailed it as a model for stricter US election rules. He cited India's electoral system as an example of election security while renewing his call for stricter voter identification requirements in the United States. We have a report.
5: In a social media post, Mr. Trump referred to a recent conversation with India's Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. He said Mr. Kumar had questioned how elections could be held in the United States without a mandatory valid photo identity document. Mr. Trump used the remarks to reiterate his demand that the U.S. Congress pass the Safeguard American Voter Eligibility, that is, Save America Act. The proposed legislation seeks to introduce stricter requirements for voting in federal elections. It would require voters to provide documentary proof of U.S. citizenship as well as valid government-issued photo identification while registering for federal elections. The White House has described the legislation as a measure to ensure that only U.S. citizens participate in American elections. The U.S. administration has said India and Brazil link voter identification with the biometric databases, while the United States largely relies on self-attestation for citizenship. Mr. Trump also highlighted the scale of India's general elections, saying around 642 million people voted in the country's most recent general election. Komudi Parekh, Akashwani News, Delhi.
3: India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Environment, Forest and Climate Change Ministry said the meeting will provide a platform to engage in substantive discussions, foster consensus and strengthen environmental cooperation.
6: The BRICS Environment Ministers meeting will be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. India has identified four priority areas for focused engagements under the BRICS Environment Working Group. These include promoting sustainable lifestyles, afforestation, forest fire management, Management and Disaster Resilience, Circular Economy and Adaptation. The BRICS Environment Working Group was established in 2015 during the first BRICS Environment Ministers meeting in Moscow. It was envisioned as a platform for BRICS countries to address fundamental environmental priorities, exchange experiences, share best practices and strengthen collective action among member countries. The Contact Group on Climate Change and Sustainable Development was established in 2024 as an effective mechanism for cooperation on climate change issues among BRICS member countries. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
3: Indian Army

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: स्वागत है आप सभी का 107.1 MHz आकाशवाणी के ये FM रेनबो चैनल है। सुबह के 8:40 हो रहे हैं। ये वक्त होता है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम मस्त मुंबई का। चूंकि आज मंगलवार है और मस्त मुंबई की ये आज के श्रृंखला में आज के दिन

जो श्रृंखला होती है वो होती है कल आज और कल कार्यक्रम का। तो आज हम कल आज और कल के तहत जो बेहतरीन जो बेहद प्यारे से नगमे आपको सुनाएंगे और जिनकी बातें करेंगे उनकी एक झलक आपको इस गाने से मिल जाएगी और हमारे सभी जो श्रोतागण हैं चाहने वाले हैं ये सभी म्यूज़िक और हर सभी चीज़ों को इतने बेहद तरीके से जानते हैं कि उन्हें अंदाज़ा लग ही जाता है। पहली पेशकश सुखविंदर सिंह और मेगा सिंह की आवाज़ आप तक।

0: व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे ऐसा उतारता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। पेड़ पर पक गया है फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई। देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई। जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये FM रेनबो चैनल है और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त RJ रविशंकर। सुबह के 8:55 हो रहे हैं, कार्यक्रम मस्त मुंबई चल रहा है और मस्त मुंबई के श्रृंखला के कार्यक्रम आज और कल के तहत आज जिस फनकार की हम बात कर रहे हैं वो है गीतकार कवि गुलजार साहब।

शायर कह सकते हैं, उन्हें कंप्लीट एक वो उन्होंने कई विधाओं में काम किया है। आज उन्हीं के लिखे हुए गीतों को हम सुनेंगे और उन्हीं के बारे में हम बातें भी करेंगे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, 18 अगस्त दीना पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। हालांकि गुलजार साहब के नाम से तो हम जानते हैं, लेकिन उनका जो जन्म का नाम था उनके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या था उनका नाम और किस तरह से उनकी

0: Response Digital Banking सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: EKYC
1: NEFT RTGS
0: IMPS
1: Cosmos रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: UPI जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट Cosmos बैंक में जरूर होना चाहिए
1: Cosmos Cooperative Bank Enriching Life

जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये FM रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त RJ रविशंकर। कार्यक्रम मस्त मुंबई चल रहा है और आज हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब की। अभी आपने गाना सुना कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, गुलजार साहब के लिखे बोल थे। गुलजार साहब भारतीय उपमहाद्वीप में अकेले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी और उर्दू के बीच के फर्क को मिटा दिया। उन्होंने हिंदुस्तानी यानी आम बोलचाल की भाषा को अपनी शायरी की जुबान बनाया। वह ऐसे शायर हैं जो हमेशा पढ़े जाएंगे, उनकी फिल्में पीढ़ियां देखेंगी, उनकी रचनाओं पर शोध तो होते ही रहेंगे। हिंदुस्तानी जुबान में बात अगर बहुत उत्कृष्ट ढंग से कही जाएगी तो गुलजार साहब का नाम एक मानक के तौर पर लिया जाएगा। उम्र के 90 दशक में भी वह अपनी शायरी से युवा लड़का जो प्रेम में गिरफ्त है और तजुर्बेकार बुजुर्ग दोनों को अपनी शायरी से प्रभावित करते हैं। ऐसे हैं गुलजार साहब। बने रहिए FM रेनबो के साथ। अगली पेशकश उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ आप तक।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: आजादी का जश्न BSNL के संग फ्रीडम ऑफर सिर्फ 1 रुपए में पाएं 1 GB डेटा रोज 100 SMS रोज अनलिमिटेड कॉलिंग और 24 दिन की वैधता सीमित अवधि का खास ऑफर हर दिल जुड़े भारत बढ़े BSNL के साथ आगे बढ़ें अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 1503 पर कॉल करें

जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल सुन रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। कार्यक्रम मस्त मुंबई चल रहा है, मस्त मुंबई की श्रृंखला कल आज और कल के तहत हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब की। जी हाँ, गुलजार साहब की बात अगर हम करें, कहते हैं कि हर बड़े रचनाकार की ताकत होती है कि वह अपने बनाए गए प्रतिमानों को खुद ही तोड़ता है। रचनाकार जो समय की कसौटी पर खरा ना उतरे और नई पीढ़ी से जुड़ाव ना महसूस करे, वो अपनी बात को नहीं कह सकता। गुलजार साहब अपने पुराने दौर में लिखते हैं कि गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ, तो वहीं दूसरी तरफ लिखते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। फिर वहीं लिखते हैं कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, चड्डी पहने फूल खिला है। वह कहने का मतलब है कि वो हर दौर से जुड़े हुए हैं, समय के नब्ज को पकड़े हुए हैं। वह इस बात का रोना नहीं रोते कि पुराना जमाना अच्छा था या नया जमाना बुरा है। यही वजह है कि हर बार नए नजर आते हैं। वह बच्चों की मानसिकता में जाकर लिखते हैं, जो गाना हमने आपको सुनाया, लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा। और जब वो रोमांटिक गीत लिखते हैं तो लिखते हैं कि आपकी आंखों में महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। खैर, गुलजार साहब के बारे में तय करना मुश्किल है, क्योंकि गुलजार साहब

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ, आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये FM रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रवि शंकर। 9:37 हो रहे हैं, कार्यक्रम मस्त मुंबई चल रहा है। गुलजार साहब की बातें हो रही हैं, चांद को लेकर बहुत सारे बातें की गई हैं। उर्दू शायरी में तो चांद को महबूब का प्रतीक बनाकर पेश किया गया है, और अपनी बातों को चांद को महबूब बनाकर कहने की रवायत काफ़ी पुरानी है। लेकिन अगर गुलजार साहब की बात करें तो उन्होंने चांद को रोटी तक बना दिया, चांद को खिलौना, चांद को नाव, चांद को दोस्त बना दिया। चांद उनका रह गुजर है, चांद उनका हमसाया है जो हमेशा उनके साथ चलता रहता है, चांद उनके लिए भरोसा है। गुलजार साहब ने अपनी माँ का चेहरा बहुत ही कम उम्र में नहीं देखा था, उनकी परवरिश पिताजी के हाथों हुई थी और पिताजी ने उनकी परवरिश इस प्रकार से पेश की कि जहाँ पर आम तौर पर हर लेखक के दिल में, उस दौर के लेखक के दिल में नज़्म में कहीं ना कहीं बंटवारे का, पार्टीशन का जो दर्द था वो आ जाता था, लेकिन गुलजार साहब के नज़्म में, कविताओं में वो दर्द आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो प्रेम और सौहार्द की बातें करते रहे हैं। अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ आप तक।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये FM रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आज रवि शंकर। 9:52 हो रहे हैं, कुछ एक गाने की गुंजाइश यहाँ पर रह गई है और आज हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब की।

कहते हैं कि उनकी कविताओं, उनकी नज़मों और कहानियों में उदासी बहुत है, कुछ लोग ये कहते हैं। लेकिन वह उदासी सिर्फ अपने लिए है, वह दूसरों के लिए सिर्फ खुशी और रोशनी बांटते हैं। गुलजार साहब फिल्मी गीत लिखते हुए भी ज़िंदगी जीने के तजुर्बे सिखाते हैं। उनका गीत है कि ऐ ज़िंदगी गले लगा ले, हमने तेरे हर एक गम को गले लगाया है। उनका आग्रह जिंदगी से गले लगाने का है, ना कि मौत से। उनका गीत है कि मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, यानी कि वो दूसरों के लिए सात रंग के सपने चुनने वाले शायर हैं। गुलजार बहुत आशावादी व्यक्ति हैं। गुलजार साहब ने लिखने के अलावा डायरेक्शन समेत सिनेमा के अन्य विधाओं में भी काफ़ी काम किया है, लेकिन वो खुद को सबसे पहले लेखक कहलाना पसंद करते हैं। लेखक की गरिमा के साथ जीने का जो सौंदर्य देता है वो गुलजार हैं। अगली पेशकश आप तक फिल्म रावण से रेखा भारद्वाज और जावेद अली की आवाज़। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। अगली पेशकश इस गाने के बाद होगा। मुख्य समाचार के साथ हम जुड़ेंगे और उसके बाद फिर

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: सुबह के 10 बज चुके हैं। पेश है अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से स्वतंत्रता दिवस के आसपास किए जाने वाले संभावित हमलों की साजिश नाकाम हुई। झारखंड में JPSC और JPSC उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC CGL परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद यह घोषणा की। समाचार में आगे, महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में कल सुबह एक स्टील विनिर्माण इकाई में विस्फोट होने से 3 कर्मचारी घायल हो गए। विस्फोट के कारणों की जांच चल रही है। समाचार में आगे, खेल। भारत को कल नीदरलैंड्स के एमस्टलेफेन में खेले जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप के अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड से 2-4 से हार का सामना करना पड़ा। कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार। पेश है अगला कार्यक्रम नमस्ते भारत। नमस्ते भारत की अगली पेशकश आप तक।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी का ये FM रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त RJ रविशंकर। 10:07 हो रहे हैं। कार्यक्रम नमस्ते भारत चल रहा है और नमस्ते भारत में आज श्रृंखला है भारत हमको जान से प्यारा है। और इसी हफ्ते हमने स्वतंत्रता दिवस भी मनाया है और साथ ही साथ आज के दिन को हम आज 18 अगस्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि के तौर पर भी मनाते हैं। तो जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ऐसे महान वीर सपूत का आज पुण्यतिथि भी है। तो चलिए आज उन्हीं को समर्पित करते हुए ये पहली पेशकश फिल्म केसरी से बी पराग की खूबसूरत सी आवाज़ आप तक।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू शर्तें लागू आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, सुबह के 10:25 हो रहे हैं। कार्यक्रम भारत हमको जान से प्यारा है में आज हम बात कर रहे हैं महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र कर रहे हैं हम। आज ही के दिन उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और आज के ही दिन को हम उनके पुण्यतिथि के तौर पर याद करते हैं। नेताजी के लिए स्वाधीनता जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। बस यही श्रद्धा, यही आत्मविश्वास जिसमें ध्वनित हो, वही व्यक्ति वास्तविक सृजक है। नेताजी ने पूर्ण स्वाधीनता को राष्ट्र के युवाओं के सामने एक मिशन के रूप में प्रस्तुत किया। नेताजी ने युवाओं से आह्वान किया कि जो इस मिशन में आस्था रखता है वो सच्चा भारतवासी है। बस उनके इसी आह्वान पर ध्वजा उठाए आजादी के दीवानों की आजाद हिंद फौज बन गई। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि विचार व्यक्ति को कार्य करने के लिए धरातल प्रदान करता है, उन्नतिशील शक्तिशाली जाति और पीढ़ी की उत्पत्ति के लिए हमें बेहतर विचार वाले पंथ का अवलंबन करना होगा, क्योंकि जब विचार महान साहसपूर्ण राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होंगे तभी हमारा संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। आज युवा वर्ग में विचारों की कमी नहीं है, लेकिन इस विचार जगत में क्रांति के लिए ऐसे आदर्श को सामने रखना ही होगा जो विद्युत की भांति हमारी शक्ति, आदर्श और कार्य योजना को मूर्त रूप दे सके। नेताजी ने युवाओं में स्वाधीनता का अर्थ केवल राष्ट्रीय बंधन से मुक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक समानता, जाति भेद, सामाजिक और विचार का निराकरण और सांप्रदायिकता संकीर्णता त्यागने का विचार का मंत्र भी दिया। जी हाँ, तो ऐसे थे हमारे महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कार्यक्रम नमस्ते भारत सुन रहे हैं और नमस्ते भारत के तहत आज हम श्रृंखला भारत हमको जान से प्यारा है के तहत आज हम नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको इसी भाव से, देशभक्ति से ओतप्रोत गीत भी सुना रहे हैं। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, अगर कुछ फरमाइशें आप भेजना चाहते हैं इसी थीम से रिलेटेड, गीत कुछ आप फरमाइश करना चाहते हैं तो कर दीजिए और हम जरूर अपने कार्यक्रम में उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए FM रेनबो के साथ।

0: अरे खरं सांगू, आताच तर उन्हाळा सुरू झालाय आणि 7-7 हजारांचं विजेचं बिल सुद्धा यायला लागलं. बायको कधीपासून सांग.
1: कॉसमॉस डिजिटल बँकिंग सेवा आसान और सुरक्षित.
2: इंटरनेट बँकिंग,
1: मोबाईल बँकिंग,
2: व्हॉट्सअप बँकिंग,
1: ई KYC,
2: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
2: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए.
2: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा. वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है. मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ. जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in.

जी हाँ, मौला मेरे ले ले मेरी जान। कार्यक्रम नमस्ते भारत सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। नमस्ते भारत के तहत आज भारत हमको जान से प्यारा है में आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस को। आज के इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ जुड़ने वाले जो श्रोता हैं उनका जिक्र हम यहाँ कर देना ज़रूरी समझते हैं। प्रदीप अनंत कृष्णन जी ये जुड़े हैं और साथ ही साथ गाने की भी फरमाइश भेज रहे हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से वो लिख रहे हैं। प्रणव शिंदे जी हैं, वो गुलजार साहब की ही पेशकश है, वो छोड़ आए हम वो गलियाँ का फिर से प्ले करने के लिए कह रहे हैं कि विजेंद्र घटोल जी अकोला जी कह रहे हैं कि हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा सर, और साथ ही साथ उन्होंने गाने की फरमाइश भी भेजी है। फिल्म वीर जारा से भी पेशकश है कि ऐसा देश है मेरा, भेजने वाले हैं नागौर राजस्थान से नौरत राम सुवासिया जी। फिरोज सिंगापुरिया जी भी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ऊंची वादियों में बसते हैं भोले शंकर, ये गाना चला दीजिए। और कैसे हैं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। बाबा दादर से जुड़े हैं और रजनीकांत पाटिल वाडवन जी। हाँ, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। नमस्ते भारत के तहत ये गा भारत हमको जान से प्यारा है मैं आज हम आपको देशभक्ति से उत्प्रोत गीत सुना रहे हैं और महान वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस जी को हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उनके पुण्यतिथि पर। तो अगली पेशकश, जैसा कि हमारे एक लिस्टनर्स ने राजस्थान से लिखा भी है कि वीर जारा का गाना सुना दीजिए, तो चलिए हमारे प्लेलिस्ट में शामिल भी है। अगली पेशकश पहुंचा रहे हैं वीर जारा से उदित नारायण लता मंगेशकर की आवाज़ आप तक।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी कार्यक्रम नमस्ते भारत सुन रहे हैं मेरे यानी रवि शंकर के साथ। नमस्ते भारत में आज हम बात कर रहे थे, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी को, और एक ही गाने की गुंजाइश बच गई है इस हिस्से में, और इसी गाने के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिल्म बॉर्डर का ये गाना रूप कुमार राठौर की आवाज़ में आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो चलो इस गाने के बोल हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। बने रहिए FM रेनबो के साथ अगली पेशकश आप तक।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। मैं हूं आरजे नमित, आपके साथ पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श सर्वसम्मति तक पहुंचाने और पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री भरत गोगावले को रायगढ़ और गिरीश महाजन को नासिक जिले का पालक मंत्री नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों की घोषणा कल जारी सरकारी आदेश के माध्यम से की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई और उपनगर में अगले 3-4 घंटों में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। हालांकि विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार ठाणे, पुणे और रायगढ़ में इस दौरान मध्यम बारिश हो सकती है। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम स्टेलफेन में खेला जाएगा। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं आरजे नमिता. हाय हेलो सत श्री अकाल वणक्कम केम चका सका मुंबई. मैं हूं नमिता और ये है प्रोग्राम आपका अपना रेनबो पर ब्रेक फ्री. और ब्रेक फ्री में हर बार हम कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेके हाजिर होते हैं जो आपसे जुड़ा होता है, आपकी आदतों से जुड़ा होता है, आपके जज्बातों से जुड़ा होता है. तो आज क्या है ये जानेंगे इस गाने के उस पार, और गाने में इस सब्जेक्ट की हिंट जरूर आपको मिल जाएगी. बने रहिए यही FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक.

वेलकम बैक। तो समझ आ गया होगा आपको क्या सब्जेक्ट है। नहीं आया तो बता देती हूँ, आज का सब्जेक्ट जो है उस एडिक्शन पर है जिसके लिए ना कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ना ही रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कुछ चाहिए, बस एक मोबाइल चाहिए और कुछ लोग चाहिए जो हाँ कहें आपसे, उनकी हाँ भी चाहिए। किसी ने हमारी फ़ोटो पर लाइक किया मूड खराब, अनलाइक किया मूड खराब, किसी ने हमारे काम की तारीफ नहीं की लगता शायद हम अच्छे नहीं हैं, और किसी ने हमारे फैसलों को क्वेश्चन कर दिया, तब तो समझो आज का दिन ही खराब है, आज अपने ही डिसीजन पर हमें डाउट होने लगा। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या आपकी खुशी की चाबी किसी और की जेब में है? तो आपकी ज़िंदगी का मालिक कौन है, आप या वो? जी, आज के ब्रेक फ्री में बात होगी अप्रूवल एडिक्शन की, और ये अप्रूवल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित हो, ये हमारी लाइफ में कैसे घर घर जा रहा है और कैसे हम इसके आदी हो गए ये हम जानेंगे। और आपको जानना है, अपने भीतर झांकना है कि ये एडिक्शन आपको है कि नहीं, तो इसके लिए सुनते रहिए FM रेनबो। मैं हूं नमिता, प्रोग्राम है ब्रेक फ्री।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक।
2: आजादी का जश्न BSNL के संग फ्रीडम ऑफर, सिर्फ 1 रुपए में पाए 1 GB डेटा रोज, 100 SMS रोज, अनलिमिटेड कॉलिंग और 24 दिन की वैधता, सीमित अवधि का खास ऑफर। हर दिल जुड़े, भारत बढ़े, BSNL के साथ आगे बढ़े। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 1503 पर कॉल करें।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे. मैं हूँ अर्जुन अमिता आपके साथ, और ब्रेक फ्री में हम बात कर रहे हैं उस एडिक्शन की जो आजकल हम सभी में कहीं ना कहीं एक घर बना चुका है. लाइक्स, कमेंट्स और वैलिडेशन की ज़रूरत हमें पढ़ने लगी है. पहले इसकी ज़रूरत भले ही नहीं होती थी, लेकिन अगर आज मुझे अपनी वैल्यू करनी है तो मेरी इंस्टाग्राम रीच कितनी है, मैंने सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें डाली हैं और उसको कितना एक्सेप्टेंस मिला है, ये सब बातें बहुत मैटर करती हैं. उस एडिक्शन की बात करें तो जिसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है, कोई इसके लिए कोई इलाज भी नहीं अब तक बना है, लेकिन ये फ़ोन पर हमें घेर रही है और बहुत बुरी तरह से घेर रही है. हमने अपनी हर चीज़ जो है वैलिडेट होने के लिए दूसरों के सामने रख दी है. कई बार तो बड़े बूढ़े जो हैं वो बोलते थे ना कि अपने घर की खुशियां जो है ज़्यादा बतानी नहीं चाहिए वरना नज़र लग जाती है. तो कहीं ना कहीं ये बात भी होने लगी है कि आपसे जो जेलस करते हैं, जिनमें जो आपका बहुत अच्छा नहीं भी चाहते हैं, उनको आपकी बातें पता चलती हैं और वो एक दोहरा स्वरूप आपके सामने लेकर खड़े हो जाते हैं. आपको लगता है ये हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, शायद इनके मन में हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन मन ही मन कहीं और कुछ और भावनाएं जो हैं वो पल रही होती हैं. मान लीजिए आपने कोई शानदार से कपड़े पहने, आपने खुद को देखा आईने में और आपने कहा आज तो अच्छे लग रहे हैं यार, अपन आज अच्छा दिन है, आज मैं सुंदर हूँ, आज मैंने ऐसे बाल बनाए, आज मैंने ये मेकअप किया है, या जो भी कुछ किया है उसको लेके आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और बाहर आप निकलते हैं, घर के बाहर भी चार लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं. और जैसे ही आप सोशल मीडिया में ये फोटोग्राफ डालते हैं तो पहला व्यक्ति तो वाओ बहुत अच्छे लग रहे हो डाल देता है, और उसके बाद दूसरा व्यक्ति कहता है कि ठीक है बहुत खास नहीं है. बस यहीं से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता चला जाता है. आपको लगता है कि लगता है कुछ और बदलाव की ज़रूरत है, शायद मैंने ये ठीक नहीं किया. अगर बहुत देर तक आपकी किसी फोटोग्राफ पर या आपके किसी भी चीज़ पर, पोस्ट पर बहुत देर तक कोई लाइक्स या कमेंट्स नहीं होते, तो अक्सर ही हम ये मान बैठते हैं कि ये चीज़ हमारी पसंद नहीं की जा रही. लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि ये अप्रिशिएशन हमारे लिए ज़रूरी ही क्यों है. अप्रिशिएट तो हम अपने आप को भी कर सकते हैं, है कि नहीं. और कई बार अप्रिशिएशन उन्हीं से मिलता है, जो रियल अप्रिशिएट आपको करते हैं वो आपके अपने होते हैं. आपके

प्यारी सी सूरत, उनको चाहे कितने ही मेकअप में हो ना हो, आपकी जो सीरत है उससे उन्हें प्यार होता है और वो बोलते हैं कि आप हमेशा अच्छे लगते हो यार, आज तो और जोर मार रहे हो। ऐसी सब जो कमेंट्स आपने देखे होंगे वो अपनों के थ्रू आपको मिलते रहते हैं, और ये वैलिडेशन जो होता है ये बहुत निहायत ही ज़रूरी नहीं होता है, ये हमारे मॉरल्स को बढ़ा के ही रखता है, क्योंकि इसके लिए हम उनकी आँखों में भी देख सकते हैं, उनके वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आप इस एडिक्शन के शिकार तो नहीं हैं? जल्दी से लिख दीजिए हमें 8657661071 पर।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: जी हाँ, म्यूजिकल योर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे नमिता को ब्रेक फ्री प्रोग्राम में, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं वैलिडेशन की। हम दूसरों के वैलिडेशन के लिए, उनकी सराहना के लिए, और ये कहें कि उनकी स्वीकृति के लिए बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि वो हमारे व्यक्तित्व को सराहें, हमारे स्वरूप को सराहें, या कहीं ना कहीं हमें अपना आइडियल मानने लगें। कुछ ना कुछ हम ऐसा करते रहते हैं और ये आदतों में शामिल हो गया है। कैसे? ज़रा से हाथ में कैमरा आने से। अदरवाइज ऐसा कहा जाए कि ना वो कैमरा था और ना ही ये वैलिडेशन की ज़रूरत थी। लेकिन ये कहना कि केवल यही उसका कारण है तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब भी हम वैलिडेशन की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ही हमें वैलिडेशन चाहिए। हमें कई बार ना अपने घर वालों से भी बहुत सारी चीज़ों की वैलिडेशन चाहिए होती है। वो अच्छी बात है कि हम ये चाहते हैं, लेकिन अगर हम उसके लिए गिड़गिड़ाने लगें या हम अपने आप को नीचा गिरा दें पर हम वैलिडेट किए जाते रहें, तो ये एक्सप्लॉयटेशन में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। कई बार ऐसी भी औरतों को आपने देखा होगा, या कई बार पुरुषों को भी ऐसे आपने देखा होगा, जो किसी एक पार्टनर के कहने पर, उनके सराहने पर इस कदर खुश होते हैं कि निरंतर झुककर चलना सीख जाते हैं, या उनकी बातों को मानते मानते अपनी आइडेंटिफिकेशन कहीं ना कहीं खो देते हैं। तो ये वैलिडेशन हमें एक्चुअली उतनी ज़रूरत ना होते हुए भी लगता है कि हमारे इस माहौल में हमें ये वैलिडेशन की बहुत ज़रूरत है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? 8657661071 पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि ये जो सोशल मीडिया की लेबोरेटरी है और इसमें एक के बाद एक फ़ोटोज़ डाली जाती हैं। कई बार लोग डालते हैं, 5-7 मिनट वेट करते हैं कितने लाइक्स आए, फिर से मोबाइल चेक करते हैं, देखते हैं अच्छा अभी ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया, ठीक है 10 मिनट बाद फिर से एक बार फ़ोन चेक करते हैं, देखते हैं अभी तक फलाने व्यक्ति ने नहीं देखा, कोई कमेंट नहीं किया, इसने सिर्फ लाइक किया, इसने कमेंट नहीं किया। अच्छा कमेंट किया तो कैसा कमेंट किया है, अच्छा है या यूजुअल जो लिख देते हैं वो है, कोई इमोजी दिया है क्या। 20 मिनट बाद हम ऐसा करते हैं कि इसमें इतने ही लाइक्स आए हैं, लगता है ये बहुत पसंद नहीं आई लोगों को, तो डिलीट कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है, आप भी करते हैं, तो आप इस आदत के शिकार बन चुके हैं। फिर आप ही तो इंतज़ार करेंगे ना कि कितनी खूबसूरत तस्वीर है, ये पता करने का हक हमें नहीं है बल्कि लोगों को है कि वो पता करें कि आपकी तस्वीर कितनी खूबसूरत है।

जी हाँ, ये दिल तुम बिन यानी कि फ़ोन के बिन कहीं ही लगता नहीं, तो वो क्या करें। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या कि फ़ोन के बगैर आप 10 मिनट भी अलाइव नहीं फील करते हैं, ज़िंदा नहीं फील करते हैं? हम बात कर रहे हैं सेल्फ एक्सप्रेशन और वैलिडेशन सीकिंग की, और नीता फाजली की एक बेहद खूबसूरत शेर जो है वो मुझे याद आ रहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। इंसान की पहचान सिर्फ उस इमेज से नहीं होती दोस्तों जो दुनिया देखती है, हमारे अंदर कई वर्जन

0: होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है, एक जो अपने करीबी लोगों को दिखता है, एक वो जिसे शायद हम खुद भी पूरी तरह से नहीं जानते। तो फिर दुनिया के अप्रूवल से अपनी पूरी आइडेंटिटी क्यों तय करें? लाइक बॉलीवुड ने भी अप्रूवल और आइडेंटिटी के बीच में कई बार ये जो फैक्ट है वो दिखाने की कोशिश की है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, गानों के बोल होते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि लोग उसे सुहाना बनाएंगे, आपका खुद सफ़र सुहाना हो ये हम पर तय करता है। क्यों सफ़र में हर मोड़ पर ऑडियंस नहीं मिलती ना, तालियां नहीं मिलेंगी ना, कभी आलोचना, कभी नोटिस भी नहीं करेगा कोई आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सफ़र कम वैल्यूबल हो गया है। एडिक्शन सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, रिश्तों तक पहुंच गया है। तो आप भी अगर अपने उसे गुस्सा हो जाते हैं कि हमने फलानी चीज़ डाली थी और आपने लाइक नहीं किया, हमने ये कपड़े पहने थे और आपने पसंद नहीं की, हम आपसे तालियां चाहते थे आपने हमें दिया ही नहीं, तो कोई अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं बदलना है आपको, कोई लाइक्स आपको नहीं बदल सकती, कोई कमेंट्स आपको नहीं बदल सकते, कोई ट्रेंड भी आपको नहीं बदल सकता, लेकिन सिर्फ आपका सेल्फ बिलीफ आपको मजबूत बनाता है, हमको मजबूत बनाता है। तो दुनिया की हाँ और ना दोनों ही अपनी जगह छोटे हो जाते हैं। तो आज कंपैरिजन से ब्रेक फ्री, वैलिडेशन से ब्रेक फ्री, पीपल प्लीजिंग से भी ब्रेक फ्री हो जाएं, और सबसे ज़रूरी दूसरों की नज़रों में परफेक्ट बनने की कोशिशों से ब्रेक फ्री हो जाएं। यही संदेश है आज का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये विज्ञापन और विज्ञापन के उस पार एक और प्यारा सा नगमा कर रहा है आपका इंतजार। बने रहिए यहीं एफएम रेनबो के साथ।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, आपकी दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे पत्थर के सनम होंगे जिन्होंने आपको लाइक नहीं किया, कमेंट्स नहीं किए, मगर वो आपको पसंद ज़रूर करते होंगे। तो वैलिडेशन के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए कि व्यक्ति अगर आपको पसंद करता है तो वो आपको सोशल मीडिया पे वैलिडेट करेगा या आके तारीफ़ करेगा या कोई ऐसी बात होगी। लेकिन जब जब आप मिलेंगे ना, तो सामने वाले की आँखों की चमक आपको बता देगी कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, और ये तो महसूस करने वाली बात होती है। इसके लिए जुबान की ज़रूरत भी नहीं होती। इसीलिए तो कई सारे दिल हैं जो ऐसे ही मिल रहे हैं आँखों आँखों में, उनमें बात नहीं होती, उनके पास प्रेम की भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं होती। बने रहिए, म्यूज़िक कैफे का सफ़र जारी होगा समाचारों के उस पार। ये आखिरी वाला गाना आपके लिए FM रेनबो पर।

0: एक बार फिर आपका स्वागत है, गुड आफ्टरनून है सभी को, और म्यूजिक कैफे का सफर शुरू हो चुका है दोस्तों। कभी नदियाँ, उनसे गिरने वाला पानी और बादलों से गिरने वाला पानी साथ साथ देखा है, कभी चिड़ियों की चहचहाट और भंवरों की गुंजन को एक साथ सुना है, कभी सूरज की रोशनी जो रात की चांदनी के साथ महसूस हो जाए, ऐसा कोई नज़ारा देखा है? अगर हाँ, तो आज तैयार हो जाइए ऐसे ही एहसास को एक बार फिर महसूस करने के लिए इसी म्यूजिक कैफे में। दो अंदाज हैं, अलग अलग अंदाज और एक एहसास। दिलेर मेहंदी की धुन, गुलजार के बोल। जी हाँ, संगीत से जुड़े हुए दो नाम जिनका एक साथ आज हम जन्मदिन मना रहे हैं और साथ ही दोनों की विधाओं पर संगीत के एहसास का परचम लहरा रहे हैं। दोस्तों, गुलजार साहब का जन्म 18 अगस्त 1964 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार रहे हैं और इनके अतिरिक्त कवि हैं, पटकथा लेखक हैं, फिल्म निर्देशक हैं, नाटककार हैं और प्रसिद्ध शायर भी हैं। उनकी तो आवाज़ में भी आपने बहुत सारी रचनाएं सुनी होंगी। उनकी रचनाएं जो हैं मुख्यतः हिंदी, उर्दू और पंजाबी में हैं, परंतु ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मारवाड़ी और हरियाणवी में भी उन्होंने रचनाएँ की हैं। उनके बारे में और जानेंगे, लेकिन उनके ही बोल पर आधारित ये खूबसूरत सा नगमा सुनने के बाद बने रहिए यहीं एफएम रेनबो के साथ।
1: बरसों बाद घूमने निकली हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आजादी का जश्न BSNL के संग फ्रीडम ऑफर, सिर्फ 1 रुपए में पाएं 1 GB डेटा रोज, 100 SMS रोज, अनलिमिटेड कॉलिंग और 24 दिन की वैधता, सीमित अवधि का खास ऑफर। हर दिल जुड़े, भारत बढ़े, BSNL के साथ आगे बढ़ें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-180-1503 पर कॉल करें।
5: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
6: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
5: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
6: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, हाय रब्बा, एकदम गाने में डांस करने का मन हो गया ना। तो जब आज की बात की जाए 18 अगस्त की, तो आज के दिन हम दो दो हैप्पी वाले बर्थडे बना रहे हैं। तो पटना बिहार के ये सिंगर हैं दिलीर मेहंदी, जिनके हम ये गाने सुन रहे हैं, और उनको भी विश करते हैं उनके बर्थडे पर, उनके जन्मदिन पर। पंजाबी लोक भांगड़ा, ऊर्जा, ऊंची आवाज़, मंच की बिजली, ये सब इनकी तारीफ है। यानी ये सभी विधाओं पर इन्होंने काम किया, और इनके गाने सुनते ही थिरकने का मन होता है। दूसरी तरफ है गुलजार साहब, नज़ाकत, खामोशी, उनकी शेर व शायरी, शब्दों की गहराई और आवाज़ जो कहती है एक नई, हमारी जो ऊर्जा है, जो अंदर की आवाज़ है वो निकल के बाहर आ जाती है। उनकी आवाज़ ये कहती है कि ठहरो और महसूस करो। दिलेर मेहंदी जी की आवाज़ कहती है उठो और नाचो। एक धुन आपको भीड़ में ले जाती है, दूसरी आपको भीतर लेके जाती है। और कमाल है ना, दोनों का रास्ता अलग अलग है मगर मंजिल एक ही है, दिल तक पहुँचना। तो अभी तक हम जो है हंसते गाते गीत सुन रहे थे। गुलजार जी के भी बहुत सारे नगमे हैं जिन्होंने उन्हें लिखा है, जिसमें कहीं आवाज़ भी दी है। देशभक्ति पर बात करें तो दोनों ही, यानी कि गुलजार साहब जी की या दिलेर मेहंदी जी की, इन दोनों की ही आवाज़ में ऐसे गीत देखने को मिल जाते हैं, सुनने को मिल जाते हैं। तो क्यों ना हो जाए दोनों की ही एक एक देशभक्ति गीत।

तो दोस्तों, दोनों ही नाम यानी कि दिलेर मेहंदी और गुलजार साहब, दोनों ही नाम दिल को छू जाते हैं। एक थिरकने पर मजबूर करता है तो दूसरा सोचने पर मजबूर करता है। एक जुबान से जो है हमारी आत्मा को बाहर निकालता है और थिरकने पर मजबूर करता है, तो दूसरा आत्मा के अंदर झांकने को हमें कहता है। फिलहाल उन पर बातें होंगी हिट एंड हॉट प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम की तरफ। एनसीईआरटी का उमंग प्रोग्राम इस वक्त आप सुनने जा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
0: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
0: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
0: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना?
0: जी।
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
0: श्रोताओं आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी।
0: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
2: जी।
0: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
2: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
0: जी।
2: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
2: जी।
0: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
2: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
0: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
2: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओं, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
0: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
2: जी।
0: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
2: जी।
0: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
2: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
0: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
2: जी।
0: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
2: जी,
0: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
2: इसका संबंध खान पान से है।
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
0: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: अश्रोताओ, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
0: पंडित बिरजू

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा था। यही ब्रिजमोहन नाम आगे चलकर

0: बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था।
1: सरिया खेलते हैं किसन रामा, दूसरे पिसन रामा, तीसरे
0: अवन। उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
2: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था, इसी वजह से उनका नाम ब्रिजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
2: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
3: प्रणाम पिताजी।
4: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
3: क्या पिताजी?
4: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
3: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं, और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
4: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
3: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
4: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
3: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
4: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
3: जी पिताजी।
2: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
0: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
5: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
6: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है। और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग हैं, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाइज अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना और बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो बहुत खील बताशा जेब में पड़ा और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ, सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूं, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूं। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊं कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त तो ये उंगलियां भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
5: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
6: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में 4 घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज खत्म होने लगती है और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा, पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ थोड़ा देखेगा समझेगा, तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूंगा घर की विद्या। मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे 25 रुपये 50 रुपये करके ही नाम पाके। तो मैंने कहा बाबू मैं, अब अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो, अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
5: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीजों को?
6: अरे उनको बड़े मजे में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथेता ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथेही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? हाँ खाते हैं। पूड़ी खाते हो? हाँ खाते हैं। तो सब्जी पूड़ी,
7: वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह तो वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
5: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए, उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
2: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
0: जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
8: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
9: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई, मैकेनिक बोला भाई रात को मत चलाना, हमने सोचा यार इतना तो चलता है रोज

0: सीधा रास्ता है, मैं जानता हूँ।
1: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
2: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
3: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
4: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
5: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
4: भगत सिंह।
6: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
7: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
6: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
8: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
9: कौन कौन है?
10: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
9: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
10: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
9: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
10: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
9: ये इस शीशी में क्या है?
10: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
9: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
10: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तो देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
9: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
10: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
6: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर

0: प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
1: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
2: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
3: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
2: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
0: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
4: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

मोबाइल ऐप यानी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने का आधुनिक माध्यम। रेडियो समाचार भी माध्यम ही है। ऐप रेडियो, जब ये दोनों एक होते हैं तो जाहिर है दुनिया और करीब आ जाती है। आकाशवाणी मुंबई की संवाददाता चैनल और अस्मिता चैनल वर्षों से अपने श्रोताओं के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कोंकणी, गुजराती, उर्दू, सिंधी और कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करते आ रहे हैं। अब ऐप न्यूज ऑन एयर के डाउनलोड के जरिए आप संवाददाता अस्मिता, एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड के जीवंत कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर और जुड़िए, संवाद कीजिए आकाशवाणी मुंबई के चारों चैनलों से।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. कुछ ही पलों में हिट एंड हॉट कार्यक्रम होगा. समाचारों के उस पार बने रहिए यहीं एफएम रेनबो पर 107.1. और अपने गीत भेजने के लिए जल्दी से नंबर डायल करें 8657661071.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे. मैं हूँ आरजे नमिता और आप सबका एक बार फिर स्वागत है. और हिट एंड हॉट प्रोग्राम में आप सभी को इंतज़ार रहता है कि आपके नाम आपके गीत बजेंगे. और बिल्कुल हमारी कोशिश रहती है कि इस एक घंटे आपकी पसंद के सारे गाने सुनाएं, लेकिन कुछ एक मनोरंजन के लिए छोटे छोटे हमारे सवाल होते हैं, हल्के फुल्के सवाल होते हैं, जल्दी जल्दी से जवाब देने के लिए रेडी हो जाइए. पहला गाना मैं बता दूं कि अमित भगत जी की पसंद का क्यों करके रखा हुआ है, बिल्कुल बजेगा इस सवाल के उस पर. सवाल क्या है? एक फिल्मी स्टोरी लाइन जो कि दो तीन लाइंस में आपको ये जज कर लेना है कि कौन सी फिल्म है. बहुत आसान सी फिल्म पूछ रही हूँ और लास्ट वाली जो लाइन है ना, उसको सुनने के बाद तत्काल प्रभाव से आप नाम लिख देंगे और आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा. लेकिन यकीन मानिए, पहला सवाल सरल हो सकता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे सवाल कठिन होते जाते हैं. फिलहाल स्टोरी लाइन पर गौर कीजिए कि एक चोर पुलिस से बचने के लिए अपनी शक्ल बदल लेता है. वो एक सीधे साधे दिखने वाले हमशक्ल की जगह ले लेता है और पुलिस कहती है कि उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. जी हाँ, कौन सी मूवी है जल्दी से लिख भेजिए. कहाँ? 8657661071 पर. फिलहाल अमित भगत जी की पसंद का ये वाला नगमा एफएम रेनबो पर.

वाह भाई, शुरुआत दिलेर मेहंदी की आवाज़ से किया है हमने, अमित भगत जी की पसंद के गीत के साथ। लेकिन जो पजल मैंने पूछी थी, मैंने कहा था बहुत आसान है, बहुत सारे सही जवाब आए, बहुत सारे लोगों की कोशिशें अच्छी हैं, पर सबसे पहली कोशिश किसकी है वो बता देती हूँ। दीपा पालकर जी ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। और सवाल था हमारा, आपको स्टोरी लाइन से फिल्म का नाम जज करना था। एक चोर पुलिस से बचने के लिए अपनी शक्ल बदल लेता है, वो सीधे साधे दिखने वाले हम शक्ल की जगह ले लेता है, और पुलिस कहती है कि उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन फिल्म की बात हम कर रहे हैं, ये तो आप सभी को पता है, बहुत ही कॉमन सी बात है। लेकिन सबसे पहले टाइप करने की जहमत जिन्हें उन्होंने उठाई है दीपा पालकर जी, उनकी पसंद का गीत यहाँ पे क्यों किया हुआ है। साथ ही फिरोज सिकनापुरी जी की पसंद का गुलजार साहब का गीत जो है उन्होंने पसंद किया है, वो भी क्यों किया हुआ है। अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं लिसनर्स, उन सभी के नाम मैं लेना चाहूँगी। गुरमीत सिंह, मीता सिंह जी, मिंटू जी हमारे साथ हैं, पिंकी लवली आरती जी भी है साथ में, डी कस्टरो जॉन जी हमारे साथ हैं, पंकज मोहोड़ जी हमारे साथ हैं, प्रमोद जी हमारे साथ हैं, ओमकार जी हमारे साथ हैं, बबन जी हमारे साथ हैं, साथ ही शुभदा जी, विट्ठल जी, विजेंद्र जी, फिरोज जी, अजय जी, श्रीराम जी, अंजू जी अंधेरी ईस्ट से, हितेंद्र दास जी, अमित भगत जी, राम प्रजापति जी, दीपा पालकर जी, हीरामणि वर्मा जी हमारे साथ हैं, बाबा जी दादर से, दिग्दर्शन और कविता जी हैं, अभिजीत जी हैं, आकांक्षा जी, प्रदीप जी, संदीप जी, गोपाल जी हमारे साथ हैं, राकेश माथुर जी हैं, मनीष बी पाटिल जी हैं, इब्राहिम जी हैं, अनिल जी हमारे साथ हैं, अंकित जी हैं, विजय जी हैं हमारे साथ, साथ ही रजनीकांत पाटिल जी हमारे साथ हैं, धनंजय जी हैं, अंगूरी वर्मा हैं हमारे साथ, विजय जी मोहब्बत से हमारे साथ हैं, साथ ही मोहम्मद फरमान जी हमारे साथ हैं, और दत्तात्रेय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोशिश रहेगी कि कुछ एक जो फरमाइशें हैं वो पूरी कर सकूं जल्दी से जल्दी। फिलहाल ये वाला गाना आ रहा है आप तक दीपा पालकर जी की पसंद पर।

इस गीत को पसंद करने वाले हमारे दो श्रोताओं के नाम मैं बोल दूं, फिरोज जी हमारे साथ जो जुड़े थे उनकी भी पसंद का ये गाना है, साथ ही इस गीत को पंकज मोहोड़ जी ने भी पसंद किया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि कुछ एक फिल्मी जो पजल मैं आपसे पूछ रही हूँ, फिल्म का नाम आपको बताना है, वो जल्दी से बता देती हूँ और जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा क्या नाम है। एक सीधे साधे आदमी को एक लड़की से प्यार होता है, लड़की को कूल लड़के पसंद है, इसलिए वो आदमी नकली बाल और चश्मा लगाकर अपना रूप बदल लेता है। कौन सी फिल्म है? ध्यान से थोड़े गौर से एक और बार सुनिए। एक सीधे साधे आदमी को एक लड़की से प्यार होता है, लड़की को कूल लड़के पसंद है, इसलिए वो आदमी नकली बाल और चश्मा लगाकर अपना रूप बदल लेता है। कौन सी फिल्म है? जल्दी से लिख भेजिए। कहाँ? 8657661071 पर।

इस गीत की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता थे संदीप कुमार जी। तकनीकी कुछ गलतियों की वजह से आपसे क्षमा चाहते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमने पूछा था एक सवाल जिसके आ गए हैं कई जवाब। सवाल था, एक सीधे साधे आदमी को एक लड़की से प्यार होता है, लड़की को कूल लड़के पसंद हैं, इसलिए वो आदमी नकली बाल और चश्मा लगाकर अपना रूप बदल लेता है, कौन सी फिल्म है ये? और फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी। जी हाँ, और सही जवाब देने वाले हमारे दो श्रोता हैं, क्योंकि दोनों ने एक साथ ही हमें मैसेज किया है। बिल्कुल मेरे भूलने के एक के अंदर इनका जवाब जो है हाजिर थे। और ये नाम है मुकेश वालिया जी देहरादून से, और विट्ठल जी हमें लिखते हैं कि हमारी पसंद का गाना बजा दीजिए, अब तो हमने सवाल का जवाब बिल्कुल सही समय पर दे दिया है। जी हाँ विट्ठल जी, आपकी पसंद का गाना ज़रूर होगा, लेकिन समाचारों के उस पार बने रहिए यहीं FM रेनबो के साथ। अगला सवाल आपको ज़रूर बता देती हूँ जल्दी से कि एक चोर पुलिस से बचने के लिए, जो कि मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ, एक दो जिगरी दोस्त की कहानी आपको बता देती हूँ। जो दो जिगरी दोस्त हैं एक पुराने दोस्त को ढूंढने निकलते हैं, रास्ते में उन्हें कॉलेज के दिन याद आते हैं, वहां एक सख्त प्रिंसिपल था जिसका नाम वायरस था, कौन सी फिल्म है? लिख भेजिए कहां, FM रेनबो पर, दिल से दिल तक, 8657661071।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1। मैं हूं आरजे नमिता। हिट एंड नॉट का सफ़र फिर से जारी है और जिनकी फरमाइशें रह गई थी, यानी विट्ठल जी जिन्होंने सही जवाब भी दिया था हमारे सवाल का, उनकी फरमाइश सुनते हैं और उसके बाद जो हाल ही में सवाल किया गया है उसके सही जवाब पर विचार करेंगे।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

वेलकम बैक। ये गीत आपने सुना हितेंद्र दास जी की पसंद पे, असम से हमें सुन रहे हैं और उनकी पसंद का ये गाना था। इसके बाद हमने जो पज़ल आपसे पूछी थी कि दो जिगरी दोस्त एक पुराने दोस्त को ढूंढने निकलते हैं, रास्ते में उन्हें कॉलेज के दिन याद आते हैं और वहाँ एक शख्स जो प्रिंसिपल था उसका नाम वायरस था। जी हाँ, वायरस सुनते ही कई सारे लोग जो हैं वो आंसर्स देते जा रहे थे और अब तक आ रहे हैं उसके आंसर। सो फिल्म का नाम तो आपने जज कर ही लिया होगा, थ्री इडियट्स फिल्म का नाम है। सही जवाब देने वाले पहले जो हमारे श्रोता हैं वो हैं प्रांजल प्रसाद पाटिल जी जोगेश्वरी से, राकेश माथुर जी, इन दोनों ने ही एक साथ ही हमें ऑलमोस्ट जवाब दिया है और वेरी फास्ट, इसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे बढ़ते हैं, आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं और फिर जाने का वक्त आ जाएगा। फिलहाल अभी एक और फरमाइश बाकी है और वो किसकी होगी ये जानने के लिए बने रहिए FM रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा ए साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख

0: रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी टीडीपीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा, जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
2: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वायरल वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी दो दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतारथुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अलीशा जी और जुबिन गर्ग की आवाज़ में गाना कृष्ण का सुना आप लोगों ने, कृष्ण नहीं इनफैक्ट ये कृष्ण 2-3 थी ना, हाँ 3 सॉरी, 5:10 का वक्त हो गया है और लव यू जिंदगी के साथ शुरुआत हो चुकी है इस गाने के साथ। इनफैक्ट मैं हूँ आप लोगों के साथ मैं शिल्पा, गला थोड़ा सा ख़राब है तो इसलिए आपको 3 घंटे झेलना होगा। ओके, तो इस घंटे हम म्यूज़िकल जर्नी जैसा कि पिछले कई हफ्तों से करते आ रहे हैं आज भी करेंगे। 2 गानों को मिलाया गया है, आपको उन्हें पहचानना है और बताना है। और आज का मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि आज मैं एक गाना ऐसा लाया है, मतलब 2 गाने हैं ना, तो एक तो आपको आ ही जाएगा झट से समझ में, दूसरा वाला जो है ना वो मतलब हमने बहुत बार सुने तो है लेकिन एक होते हैं ना एकदम सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स होते हैं जिनके तो मतलब हम ऐसा 2 सेकंड बीट सुनते हैं और समझ आ जाते हैं, समझ आ जाता है ना, उसके नेक्स्ट वाले होते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल ही हमने कभी सुने ही नहीं है, फ्लॉप सॉन्ग्स जिनको हम, वो एक कैटेगरी होती है, वैसे नहीं है ये गाना, हमने सुना है कई बार लेकिन थोड़ा अभी देखते हैं कि क्या जो है वो होता है मामला।

बताइए कौन से दो गाने हैं। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और फिलहाल के लिए अभिजीत सावंत लेकर आ रहे हैं आपका अभिजीत सावंत इस एल्बम से ये गाना।

ठंडी आवाज़, 5:51 का वक्त है, लगी ज़िंदगी पर बने हुए हैं शिल्पा के संग, और जिसकी उम्मीद होती है कभी कभी वो नहीं होता है। जैसे मुझे लगा था जो गाना इन दो गानों में मिक्स, उसमें से एक जो है वो पहचान लिया जाएगा और दूसरे में डिफ़िकल्ट होगी, दूसरा वाला पहचान लिया गया है और जो ज़्यादा हिट है वो अब तक जो है सिर्फ दो लोगों ने गेस किया है। तो एक बार मैं धुन और सुना रही हूँ, इसके बाद एक गाना जो है वो प्ले होगा, लेकिन उसके बाद राइट आंसर जो है वो बता दिया जाएगा। तो सुने ज़रा।

8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और अगर नहीं पहचान पा रहे कोई बात नहीं है, मैं तो बताने वाली हूँ इस गाने के उस पार, और फिर नई क्लिप जो है वो आएगी आप लोगों के लिए। फिलहाल के लिए रूप जौहरी और कुणाल की आवाज़ में ये गाना।

FM रेनबो पर 5:27 का वक्त हो गया है। लव यू जिंदगी पर बने हुए हैं आप सभी और राइट आंसर दिया है पंकज मोहर जी ने, नितिन जी ने, विजेंद्र जी ने घाटोल से और सुमित प्रकाश मोतले जी ने। थैंक यू सो मच आप सभी का। इनफैक्ट ज्योति जी ने एक गाना जो है वो पहचान लिया है और मुझे वाकई बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये दूसरा गाना जो है वो गेस कर लिया जाएगा और पहला वाला जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये कैसे हमने जो है वो नहीं पहचाना। लेकिन उससे पहले अगली धुन जो है वो आ रही है। दो गानों को डेफिनेटली मिलाया गया है, आपको जो है दोनों को गेस करके बताना है कि कौन से दो गाने हैं। ओके

बताइए कौन से दो गाने मिले हुए हैं, और एक तो बहुत ही क्लियरली जो है वो समझ आ रहा है, 865-6-6-1-0-7-1 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। किरण जी ने जो है वो मैसेज किया है, उसके अलावा अंजू जी ने, मनीष जी ने, वैदेही ने, अरविंद कुलकर्णी जी ने, प्राशिक

0: बुर्गर ने सरप्राइज कर दिया, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जहाँ पर उन्होंने गेस नहीं कर पाए, एक गाना जो है वो कर लिया। चलो कहीं नहीं, कभी कभी जो है वो होता है। और संजय दर्शन जी ने, पंकज मोहर जी ने, सारिका जी ने, ज्योति कुमार ने और नितिन जी ने, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और अभी यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद उस गाने को पहले सुनाया जाएगा जो कई सारे लोगों ने जो है वो नहीं पहचाना है। यस,
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

ऑलराइट 107.1 एफएम रेनबो पर उदित जी और कविता जी की आवाज़ में गाना सुना। 5:40 का वक्त हो रहा है। लव यू जिंदगी पर बने हुए हैं आप सभी, और पंकज मोहर जी ने, नितिन जी ने, विजेंद्र जी ने, सुमित प्रकाश जी ने, प्राशिक बोरकर ने राइट आंसर जो है वो दिया है, और एक गाना काफ़ी सारे लोगों ने पहचाना। इनफैक्ट अरविंद जी ने, सारिका जी ने, अशोक पाटिल जी ने, नहीं अशोक पाटिल जी ने नहीं, ओके, और भी अजय साखरे जी ने, यस, और इन्होंने तो अपना नाम नहीं लिखा है, ओके। तो दो गाने कौन से हैं वो तो मैं डेफिनेटली सुनाऊंगी, लेकिन अभी चलते हैं अगली धुन की तरफ। दोनों गाने मिले हैं, आपको पहचानना है।

मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट कम से कम 30 सेकेंड्स आप लोगों को सुना सकूँ, ताकि गाना पहचानने में जो है वो परेशानी थोड़ी सी कम हो। चलिए, अभी वो दो गाने, उनमें से एक गाना प्ले कर दिया है जुड़वा फिल्म का। जुड़वा है क्या, जुदाई है? मतलब कभी कभी दोनों फिल्मों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, नहीं जुदाई है, जुदाई है। तबीयत खराब रहती है, कभी कभी ओझल हो जाते हैं। अलका जी और अभिजीत दा की आवाज़ में ये गाना है, समीर साहब का लिखा हुआ है। एंड ये वो बीट्स हैं ना जिनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, मतलब जुदाई और जुड़वा इन दोनों के जब आप गाने सेपरेट सेपरेट सुनते हैं ना, तो बहुत सारी बीट्स ऐसी होती है, ऐसा लगता है यही वाला गाना है, फिर सुनते रहे नहीं वो वाला है। ओके, सुने और लौट कर आए यहीं म्यूजिकली। यस

7.1 FM Rainbow पर 5:47 का वक्त हो गया है. बिना किसी देरी के एक बार और धुन सुनाई जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि मैडम एक बार और जो है वो प्ले कर दीजिए.

देखिए अब इससे ज़्यादा सुनाऊंगी मैं तो पीछे से गाने के बोल जो है वो शुरू हो जाएंगे। बताइए कौन से दो गाने हैं, एक तो क्लियरली आ ही गया है काफ़ी लोगों को समझ में, दूसरे में चैलेंज है। यस, तो 8656601071 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फिलहाल के लिए राजा फिल्म का गाना अर्काजी उदित जी की आवाज़ में, नदीम शवन की कॉम्पिटिशन है, सनी साहब का लिखा हुआ है, सुने लौट कराएं यहीं म्यूजिकली योर्स पर।

और 107.1 FM रेनबो पर 5:55 का वक्त हो गया है और लव यू जिंदगी चल रहा है। शिल्पा के साथ आप बने हुए हैं, पंकज मोहर जी ने, सुमित जी ने, सुमित प्रकाश, अनिल सरोदे जी, नितिन जी और सारिका जी, इन सारे लोगों ने जो है वो राइट आंसर पहचाने। अब मैं काम करती हूँ, दोनों को साथ में प्ले करती हूँ, फिर एक गाना जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहा इस पूरे घंटे उसकी धुन जो है वो कंटिन्यू करेंगे, तो समझ आएगा आपको कि कभी कभी ऐसे मिलते हैं गाने तो कैसे ऐसी खिचड़ी जैसे हो जाते हैं, और जब वो अलग से अपना सुर लगाते हैं तो कितनी क्लैरिटी जो है वो होती है। देखो जरा

गाना एकदम उभर के आ रहा है। अभी मिक्स करेंगे तो देखे जरा। हमारे पहचान में कि कौन सा गाना है ये, बहुत हिट है, बहुत बार सुना है। सुनी लीजिए, मैं कुछ बता ही नहीं रही हूँ अभी, और फिर लौट कर आई यहीं म्यूजिकली ऑज पर।

जिंदगी चल रहा है ठीक 6:05 पर सुन सकेंगे आप नागपुर केंद्र से समाचार 6:15 पर मुलाकात होगी अंदाजे बयां के साथ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: Musically Yours 107.1 FM Rainbow पर 6:15 का वक्त हो गया है. अभी आप सुन रहे थे समाचार हमारे नागपुर केंद्र से और अब यहाँ पर शुरुआत होती है अंदाजे बयां की. और बस थोड़ी सी देर में वो क्लिष्ट हिंदी वाला खेल जो है वो आप लोगों के लिए आ रहा है. तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए अभी के लिए कुमार शानू साहब और अलकज की आवाज़ में ये गाना.
2: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है.
3: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
2: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है.
3: तो भुगतो.

अंदाज़े बयां पर बने हुए हैं आप सभी शिल्पा के साथ। और क्लिष्ट हिंदी वाला खेल जो है वो आप लोगों के लिए आ रहा है। एक गाना जो कठिन हिंदी में आपको बताया जाएगा, आपको उसको पहचानना है कि वो कौन सा गाना है। ठीक है, मुग्ध हृदय की धड़कन निःशब्द सी यह नीरवता, मुग्ध हृदय की धड़कन निःशब्द सी यह नीरवता, अंतरहित हुआ शशि क्यों, क्या तुम्हारी कुंतल लहरिया लहराई। कौन सा गाना है ये बताएं। एक बार और पढ़ो। मुग्ध हृदय की धड़कन निःशब्द सी यह नीरवता, मुग्ध हृदय की धड़कन निःशब्द सी यह नीरवता, अंतरहित हुआ शशि क्यों, क्या तुम्हारा कुंतल, क्या तुम्हारी कुंतल लहरिया लहराए। मेरी भी हिंदी अच्छी हो गई है पढ़ने में। बताइए कौन सा गाना है। 8656 6 6 1 0 7 1 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और पिछले घंटे जो वो दो धुनें मिलाई थी ना, उसमें से ये एक बड़ा वाला ऐसा 9 मिनट का गाना है ये, तो अब जो है वो इसे प्ले किया गया है। तो सुने जीत फिल्म का और फिर लौट कर आए यहीं FM रेनबो म्यूजिकली यस पर।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मुस्कुराहट और टेलीफोन की आवाज 6:37 मिनट का वक्त अंदाजे बयां चल रहा है। शिल्पा के संग आप बने हुए हैं और प्रणव शिंदे जी, पंकज मोहर जी, ज्योति कुमार जी, सारिका जी, राकेश माथुर जी और प्राशिक बोरकर, इन सारे लोगों ने सही जवाब जो है वो दिया है। थोड़ी सी धुन जो है वो मैं सुना दे देती हूँ कि कौन सा गाना था जिसकी हिंदी क्लिष्ट हिंदी इनफैक्ट कहना चाहिए आप लोगों को बताई गई थी। चलिए अब इसको पूरा गाना जो है वो सुनेंगे। अगला सॉन्ग जो है वो आ रहा है कि चंद्र प्रभा से ज्योति सूत्र खींच कर ले आओ, उसी दीप्त से अपना घूंघट निर्मित कर लो। ये दो बार है लाइन्स। चंद्र प्रभा से ज्योति सूत्र खींच कर ले आओ, उसी दीप्त से अपना घूंघट निर्मित कर लो, ठीक है, रिपीट है ये। और उसके बाद लज्जानत हो जाओ तो मेरी बाहों में समा जाना, मेरी श्वासों में इस प्रकार उलझ जाना कि तुम्हारी श्वासें मेरी श्वासों से अभिन्न हो जाएं। कौन सा गाना है? और आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है इसलिए जो है वो थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, तो पहचान गए हों तो बताइए। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बड़ा हिट सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। चलिए अभी के लिए लता जी और कुमार शानू साहब की आवाज़ में अगला गाना हो चुका है प्ले। आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ है, जतिन ललित जी ने कंपोज किया है, ये भी बड़ा प्यारा है, बहुत ही अच्छा। तो शाम की वक्त अगर बारिश हो रही है, बस एक कप इसकी चाय की प्याली या फिर कॉफ़ी का मग।

7.1 FM रेनबो पर 6:43 का वक्त हो गया है और राकेश माथुर जी पता नहीं कहाँ से इतने एकदम ब्रिलियंट है, वो ऐसे फट से जो है वो जवाब जो है वो दे देते हैं, चाहे म्यूजिक का कोई गेम हो चाहे ये क्लिष्ट हिंदी वाला खेल हो। एक प्राशिक बोरकर और एक राकेश माथुर जी, इनफैक्ट पंकज मोहर जी भी, ये तीन लिसनर ऐसे हैं जो ऐसा बहुत ही रेयर मौका आता है जहाँ पर चूकते हैं, लेकिन कई सारे लोगों को अभी एक बार और सुनना है जो क्लिष्ट हिंदी वाला गाना जो ऑलरेडी बहुत बार हम प्ले कर चुके हैं, आप सब ने सुना है, तो उसे पहचानिए कि कौन सा है। ठीक है, चंद्र प्रभा से ज्योति सूत्र खींच कर ले आओ, उसी दीप्त से अपना घूंघट निर्मित कर लो। ये रिपीट है लाइंस, ठीक है। लज्जानत हो जाओ मेरी बाहों में समा जाना, मेरी श्वासों में इस प्रकार उलझ जाना कि तुम्हारी श्वासें मेरी श्वासों से अभिन्न हो जाएं। कौन सा गाना है बताइए। 8 6 5 8 6 6 1 0 7 1 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। डर मूवी नहीं है प्राशिक। ओके, तीन और जवाब आए, चलिए मैं देखती हूँ किस किस के राइट आंसर आ रहे हैं।

कमीने फिल्म का गाना आप लोगों ने सुना। 6:53 का वक्त हो गया है। अंदाज़े बयां पर बने हुए हैं आप सभी शिल्पा के संग, और राकेश माथुर जी और सारिका जी, इन दो लोगों ने ही इस गाने को पहचाना है जिसका म्यूज़िक पीछे ऑलरेडी प्ले होना शुरू हो गया है। चंद्र प्रभा से ज्योति सूत्र खींच कर ले आओ, उसी दीप्ति से अपना घूंघट निर्मित कर लो। अब सुने इसके स्टार्टिंग के बोल, डेफिनेटली क्लियर जो है वो हो जाएगा।

हम तुम की ये वो घंटा होता है जहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट ली जाती है। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ऑलरेडी बहुत सारी फरमाइश जो है आ चुकी है और आज गुलजार साहब का जन्मदिन है, तो सबसे पहले उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं अच्छे स्वास्थ्य के लिए और बड़े सारे, मतलब बड़े में भी बहुत बड़े सारे ऐसे समुंदर कह सकते हैं उनके गानों के लिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने जो है उन्होंने लिखे हैं, तो उनमें से हम कुछ ही जो है वो एक घंटे में प्ले कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत लोगों की तो रिक्वेस्ट भी आ गई है गुलजार साहब के गानों के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। हरिहरन साहब और सुरेश वाडकर साहब और विनोद जी, इन तीनों की आवाज़ के साथ माचिस फिल्म का ये गाना सुनिए। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सबके नाम मैं बताऊँगी। पहले गाना इन्जॉय करें और फिर लौट कर आएँ यहीं म्यूजिकली पर।

0: फिरोज सिगनपुरी जी के रिक्वेस्ट पर हुआ ये गाना प्ले 7:23 का वक्त हो गया। इसके पहले जो गाना हमने प्ले किया था वो था प्रणव जी और नितिन जी के रिक्वेस्ट पर, और अब आ रही है अगली फरमाइश। ये भी इनफैक्ट कई सारे लोगों ने जो है वो मांगा है, और इसमें तो डायलॉग भी है यार, पहले वो सुनो आप।
1: किसी और सर्दी की बात थी,
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ? पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी। लो,
0: अरविंद कुलकर्णी जी, पंकज महोल जी, विजेंद्र जी, प्रिया छत्तीसगढ़ से, इन सारे लोगों के लिए और साथ में आप सब जो सुन रहे हैं उनके लिए आ रहा है ये गाना सुपर आंधी फिल्म से। फिल्म का नाम आंधी लेकिन गाना एकदम ठहराव वाला है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार

FM रेनबो पर 7:29 का वक्त हो गया है और ठीक 7:30 आप सुन सकेंगे BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के हाइलाइट्स जो चलेंगे लगभग 7:40 तक।

0: कभी चुलबुली सी शरारत, तो कभी मासूमियत बेशुमार।
1: ये है अनोखे रंगों वाला
0: FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर,
1: दिल से
0: दिल तक।

0: गीता और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ समीत आपका एक हवाई गाना है। 7:40 हो चुके हैं हम तुम पर, आप सभी बने हुए हैं। सुरभि जी की रिक्वेस्ट पर हुआ ये सॉन्ग प्ले। और अब अगली फरमाइश आ रही है अरिजीत सिंह, निहारिका जोशी, देश पांडे इनकी आवाज़ में है। गुलजार साहब का लिखा हुआ एक गाना है।
1: खोली है क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।
0: मुकेश कश्यप जी की रिक्वेस्ट।

ये लड़ी है लम्हों की, झालर बना ली है इसकी। कभी पहन लेता हूं, कभी उतार देता हूं, बस यही पेश कर रहा हूं। नाम पता नहीं, रखा भी नहीं। जानता हूं वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा। जो याद रहेगा सिर्फ इतना।

बिंदल साहब और लता जी की आवाज़ में गाना 7:51 का वक्त हो गया है और हम तुम पर बने हुए हैं। आप सब भी शुक्रिया जितने भी लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, पंकज मोहर जी, मुकेश वालिया जी, मेहर अरोरा, गजानन शिंदे, प्रणव शिंदे, अरविंद कुलकर्णी, सारिका जी, विजेंद्र घाटोल जी अकोला से, रघुनाथ जी, नितिन जी, दीपा पालकर, मुकेश कश्यप, कल्पना जी, प्रमोद जी, फिरोज जी, प्रिया छत्तीसगढ़ से, इब्राहिम, आरती सैया, ओके, इन्होंने जो है वो डॉक्टर शांतनु मिश्रा को के लिए जो है एक मैसेज जो है वो भेजा है कि उनके बर्थडे पे इनफैक्ट विशेज जो है वो भेजी है। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, अगर आप सुन रहे हैं तो डॉक्टर शांतनु मिश्रा, और ये आरती जी का कहना है इनके जीवन में इनका बहुत बड़ा रोल जो है वो रहा है। यस, बलकरण शर्मा वर्मा जी, दिग्दर्शन जी, कविता जी, प्राशिक बोरकर, भूषण सोनावले, श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, योगेश जी, महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, हीरामणि वर्मा, हितेंद्र दास, वैदेही, अजय साखरे, सुशील यादव, रेणु यादव, राकेश माथुर जी, श्रेय राउत, मिलेश गजानन राउत, आकांक्षा, ज्योति कुमार, बाबा दादर से, रवीन जी, हमारे जो आरजे रवीन, उनका भी मैसेज जो है वो आया है, रजनीकांत पाटिल जी, सुमित प्रकाश मुदले, किरण जी, अनिल सरोदे जी अंधेरी से, संजय दर्शन, अशोक पाटिल, अनुजा अंजू जी अंधेरी से, मनीष बी पाटिल, थैंक यू सो मच आप सभी का। और अब यहाँ पर आई थिंक दो गाने या एक गाना, देखते कितने गाने जो है वो फिट होते हैं आ रहे, और 8 बजे जो है वो इंटरनेशनल म्यूज़िक आप लोगों के लिए शुरू हो जाएगा जो पूरे 3 घंटे चलेगा। मेरी आपकी मुलाकात होपफुली कल सुबह 11 से 2 के बीच में होगी यहीं FM रेनबो म्यूजिकली योर्स। टिल देन अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, अच्छा कॉन्टेंट कंज्यूम करें, अच्छी रील्स फॉरवर्ड करें और बढ़िया बढ़िया म्यूज़िक जो है वो सुने, जैसे कि ऐसा वाला जो मैंने यहाँ पर प्ले करा है। भूपिंदर सिंह की आवाज़ फिर से आ रही है आप सबके लिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में

0: कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
3: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावे बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडैरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्याय

0: न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
2: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अघाबेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट

0: मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुस जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations reaffirm commitment to environmental protection and sustainable development. New Delhi stresses environmental action must address needs of developing countries. India says credibility of country's election machinery well established globally as US President Donald Trump praises poll system. Supreme Court to form high-powered panel to probe allegations of police excesses and violence against security personnel during Delhi students' protests. Pakistan's top court orders transfer of jailed former Prime Minister Imran Khan to hospital for medical examination. Iran reiterates Strait of Hormuz to remain closed till all its conditions agreed with US are fully met. In men's cricket, India tightened grip on Gal test against Sri Lanka on day 4. Host reel at 84 for 4 at stumps, chasing a 372-run target. And Indian women's doubles pair of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand advanced to pre-quarterfinals of Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. BRICS nations today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said that BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2000

0: वेलकम बैक टू एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़। आई एम आरजे अभिषेक, यू कैन कॉल मी एबीके, एंड यू जस्ट हर्ड बियॉन्से अलोंग विद कोल्डप्ले सिंगिंग हिम फॉर द वीकेंड। वेल, दैट वाज अ रिक्वेस्ट वी हैड फ्रॉम क्रिस्टीन। क्रिस्टीन, वी स्टार्टेड फ्रॉम योर सॉन्ग, एंड अप नेक्स्ट आई एम गोना बी प्लेइंग अ रिक्वेस्ट कमिंग इन फ्रॉम फिरोज सिगनपुरिया, आवर रेगुलर लिसनर। एंड दिस टाइम अराउंड फिरोज, आई एम गोना बी प्लेइंग फॉर यू डैडी कूल बाय बोनी एम। एंड फिरोज दिस टाइम अराउंड is dedicated this song to his set of friends from WhatsApp group called the World Music Lovers Group. So Firoz, enjoy Daddy Cool by Boney M. This one's for you.
1: She's crazy like a fool.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीना का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए

विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जाँच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गजल महज चंद अशर का नाम नहीं है। गजल तो दिल की वो आवाज है जिसे हम अक्सर कह नहीं पाते। कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी की जुदाई बनकर, और कभी किसी की मोहब्बत बनकर गजल हमारे सामने आती है। इसकी खूबसूरती यही है कि ये एक शेर को सुनकर हर इंसान अपनी एक अलग कहानी याद कर सकता है। किसी को पहली मोहब्बत याद आती है, किसी को बिछुड़ चुका कोई अपना, और किसी को वो शख्स जो आज भी दिल के किसी कोने में खामोशी से मौजूद है। शायद इसीलिए गजल सुनते ही हमें लगता है कि शायर ने हमारे दिल की बात कह दी है।

कार्यक्रम रंगे महफिल में मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजू दोस्त मुक्ति सैनी, और इस महफिल में आपका साथ बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये महफिल ख़ास हमारे लिए है। रात का अपना ही एक मिजाज होता है। दिन में जो बातें हमें मामूली लगती हैं वही रात में बहुत गहरी महसूस होती हैं। किसी की आवाज़, किसी की मुस्कुराहट, किसी मुलाकात की याद, सब कुछ जैसे फिर से ज़िंदा हो उठता है। और जब इन यादों के साथ कोई खूबसूरत गज़ल सुनाई दे तो दिल कुछ पल के लिए उसी दुनिया में लौट जाता है जहाँ मोहब्बत थी, इंतज़ार था और किसी के आने की उम्मीद थी। तो आज की इस रात को थोड़ा और हसीन बनाते हैं गज़ल के साथ और पढ़ाते हैं रंगे महफिल की इस खूबसूरत सी रात को और आगे, ताकि ये रात आपको सुकून और एक बहुत ही प्यारी सी नींद दे जाए, उन सुनहरी यादों में आपको लपेट के रखे, आपको उस महफिल में सजा के रखे कि आपको लगे बस यही वो पल है जो दिन भर की आपाधापी, दिन भर की भागदौड़ के बाद चाहिए था। यही वो पल है जो आपको मिल रहा है आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे

0: और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर भी याद रहते हैं और कुछ रिश्ते अधूरे रहकर उम्र भर हमारे साथ चलते हैं। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत और शायद सबसे दर्दनाक बात यही है कि हर कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कभी कोई बहुत करीब होकर भी दूर हो जाता है, कभी कोई दूर रहकर भी दिल के बेहद करीब रहता है। कुछ नाम हम अपनी जुबान से लेना छोड़ देते हैं मगर दिल उन्हें भूल नहीं पाता। ऐसी ही अधूरी मोहब्बत, ऐसे ही खामोश इंतजार और ऐसे ही अनकहे अफसानों को आवाज देती है गजल। इसी एहसास के साथ सुनते हैं हमारी अगली पेशकश, अगली गजल, प्रोग्राम रंगे महफिल में।

दोस्तों, रेडियो की महफिल की खूबसूरती सिर्फ आवाजों में नहीं बल्कि उन लोगों में भी होती है जो रात के इस सन्नाटे में हमें सुन रहे होते हैं। हो सकता है इस वक्त कोई अपनी बालकनी में बैठा हो, कोई सफर में हो, कोई अपने कमरे की खामोशी में गजल सुन रहा हो, और शायद कोई ऐसा भी हो जो किसी खास शख्स को याद करते हुए इस कार्यक्रम से जुड़ा हो। अगर आज की कोई खास गजल आपको किसी अपने की याद दिला दे तो उस याद को रोकिएगा मत। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें भुलाने के बजाय महसूस करना चाहिए, क्योंकि यादें तकलीफ जरूर देती हैं, मगर कभी कभी यही यादें हमारे दिल को सबसे ज्यादा खूबसूरत भी बना देती हैं और उस ओर मोड़ देती है जहां ये दिल सुकून पाता है, आराम पाता है।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मैं हूँ आपके साथ आपके आरजी दोस्त मुक्ति सैनी। प्रोग्राम रंगे महफिल में और ये महफिल सजी है खास आपके लिए, क्योंकि दिल से दिल तक हम सीधा पहुँचते हैं आप तक, और म्यूजिकली योर्स दिल से दिल तक हमारा ये कारवां आप तक पहुँचता रहता है। रात के इस पहर में बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत सी गजलें ऐसी हैं जो आपके दिल तक पहुँच रही होंगी, कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जा रही होंगी, कुछ आपके दिल तक छू रही होंगी, और आपको लग रहा होगा बस यही पल है जो हमें जीना है, यही वो लम्हा है जो इस समय हमें चाहिए था। तो इन्हीं यादों में आप बिल्कुल अपने आप को बैठा के रखिए। इसी महफिल, ये महफिल हर रोज़ सस्ती है आपके लिए। आप चाहें तो 102.6 के माध्यम से या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना साथ बना कर रख सकते हैं, क्योंकि ख़ास आकाशवाणी रेनबो के ये सभी कार्यक्रम आपके लिए बेहद ख़ास होते हैं। तो अब बात करते हैं आगे। शायरी की दुनिया भी कितनी अजीब है। कुछ शब्द बहुत छोटे होते हैं मगर उनके मायने बहुत गहरे। एक शेर कभी चेहरे पर मुस्कान ले आता है तो कभी आंखों में नमी। कभी वो हमारी पहली मुलाकात याद दिलाता है और कभी किसी आखिरी विदाई की तस्वीर आंखों के सामने ला खड़ी करता है। गजल की यही नफासत है जो सीधे दिल से बात करती है और दिल तक पहुंचती है। तो चलिए शब्दों की इसी खूबसूरत दुनिया में एक और कदम बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक ऐसी गजल जिसमें मोहब्बत भी है, तन्हाई भी है और यादों की एक खूबसूरत सी महक भी है। जी हाँ, गजलें वो कह देती हैं, वो बता देती हैं, वो जज्बात बयां कर देती हैं जिन्हें आप बहुत सारे शब्दों में पिरोना चाहते हैं, बहुत लंबी कहानियों में बताना चाहते हैं और एक लंबा समय आप ले लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी को कोई बात कहना चाहते हैं, अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, अपने दिल का राज बताना चाहते हैं, तो ये गज़ल है ना आपके लिए। आप जुड़ जाइए इस प्रोग्राम में और जोड़ लीजिए उन्हें भी इस प्रोग्राम में। फिर देखिए कितनी वो अनकही बातें हैं या कितनी वो कह चुकी बातें हैं जो अब तक उनके दिल तक नहीं पहुँची, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से वो उनके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी, ज़रूर पहुँचेगी।

रात अब धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, लेकिन महफिल का रंग अभी बाकी है। कुछ गजलें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के बाद हम कुछ देर तक खामोश रहना चाहते हैं, शायद इसीलिए कि उनके शब्द हमारे भीतर कहीं गहरे उतर जाते हैं। तो अगर आज की इस महफिल ने आपको किसी की याद दिलाई, किसी पुराने एहसास को जगाया या दिल में छुपी कोई बात फिर से महसूस कराई है, तो समझिए हमारी ये रात सफल हुई। क्योंकि रंगे महफिल का मकसद सिर्फ गजल सुनाना नहीं, बल्कि गजल के बहाने आपके दिल तक पहुंचना है, और उम्मीद है कि आपके दिल तक ज़रूर पहुँचे होंगे। जगजीत सिंह की आवाज़ में एक और गज़ल आपके लिए।

दिल में तो बहुत प्यार है आपके लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की महफिल को इजाजत देने का वक्त आ गया है। मगर याद रखिएगा, रातें खत्म होती हैं, महफिलें खत्म होती हैं, मगर अच्छे गीत, खूबसूरत गजलें और सच्चे एहसास कभी खत्म नहीं होते। वो हमारे साथ रहते हैं, कभी किसी धुन में, कभी किसी शेर में और कभी किसी खामोश याद की तरह। आप जहां भी हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार की इज्जत करते रहिए, क्योंकि आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा कि देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यवस्था पर तथ्य पत्र जारी किया है, चुनाव व्यवस्था से जुड़ी विस्तारित जानकारी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का बड़ा फैसला। करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार ने देश में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। आरआरबी की कुल बकाया ऋण 10.3% बढ़कर करीब 5,78,000 करोड़ रुपए हुआ है। ईरान ने दोहराया, अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक होमुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी आई अरुमनग्याम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। और पुरुष क्रिकेट में गोल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत, 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और श्रोताओं वक्त है कार्यक्रम जीरो आर शो का। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

शुदा, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम जीरो आर शो। और इस वक्त हमें एक मैसेज मिला है, हमारे नियमित श्रोता है जयंत जी, जो कि हमें पटना से सुन रहे हैं। जयंत जी ने अपनी पसंद का एक खूबसूरत गीत सुनने की फरमाइश की है, और ये गीत है फिल्म चांदनी से।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती।

मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यवस्था पर तथ्य पत्र जारी किया, चुनाव व्यवस्था से जुड़ी विस्तारित जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण

भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से दो दिवसीय चेन्नई दौरे पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का बड़ा फैसला, करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। प्रश्न पत्रों की जाँच के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था लागू होगी। सरकार ने देश में PNG कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की। कुल बकाया ऋण 10.3% बढ़कर करीब 5,78,000 करोड़ रुपए हुआ। ईरान ने दोहराया अमेरिका के सभी शर्तें पूरी होने तक होमरूच जल डमरू मध्य बंद रहेगा। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी आई अरुण मयंगम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित करने की घोषणा की। नीदरलैंड्स में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। और पुरुष क्रिकेट में गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी,
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM 10 चैनल है और श्रोताओं वक्त है कार्यक्रम सुहानी रात का। और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

0: नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्रोता भी आप सुन रहे थे सुहानी रात कार्यक्रम, और आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यवस्था पर तथ्य पत्र जारी किया, चुनाव व्यवस्था से जुड़ी विस्तारित जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय चेन्नई दौरे पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का बड़ा फैसला, करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। प्रश्न पत्रों की जाँच के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था लागू होगी। सरकार ने देश में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की। कुल बकाया ऋण 10.3% बढ़कर करीब 5,78,000 करोड़ रुपये हुआ। ईरान ने दोहराया अमेरिका के साथ सभी शर्तें।

पूरी होने तक होमूर्ज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी आई अरुण मेनेग्यम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित करने की घोषणा की। पुरुष क्रिकेट में गोल में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल आज आगे बढ़ेगा। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए, भारत जीत से 6 विकेट दूर। और नीदरलैंड्स में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब वक्त है हमारे कार्यक्रम भुलाए ना बने, और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता विश्व स्तर पर स्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यवस्था पर तथ्य पत्र जारी किया है। चुनाव व्यवस्था में जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय चेन्नई दौरे पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का बड़ा फैसला। करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। प्रश्न पत्र की जांच के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था लागू होगी। देश ने पुनः सुन लीजिए, सरकार ने देश में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की। कुल बकाया ऋण 10.3% बढ़कर करीब 5,78,000 करोड़ रुपए हुआ। ईरान ने दोहराया अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी आई अरुमेन्नयागम को

खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित करने की घोषणा की। पुरुष क्रिकेट में गाल में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल आज आगे बढ़ेगा। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। भारत जीत से 6 विकेट दूर। और नीदरलैंड में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये थे FM रेनबो इंडिया पर अभी तक के मुख्य समाचार।

Akashvani. प्रस्तुत है मिडनाइट मेलोडी नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम, आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।

एफएम रेनबो इंडिया पर प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यवस्था पर तथ्य पत्र जारी किया है। चुनाव व्यवस्था से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय चेन्नई दौरे पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का बड़ा फैसला, करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। मई में यह अनुमान 6.7% था। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की। कुल बकाया ऋण 10.3% से बढ़कर करीब 5,78,000 करोड़ रुपए हुआ। सरकार ने देश में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। ईरान ने दोहराया, अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी आई अरुमन्यागम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित करने की घोषणा की। पुरुष क्रिकेट में गोल में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के 4थे दिन का खेल आज आगे बढ़ेगा। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने 4थे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। भारत जीत से 6 विकेट दूर। नीदरलैंड में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। और फुटबॉल

में 135वें डूरंड कप के पहले सेमीफाइनल में आज कोलकाता में ईस्ट बंगाल एफसी का मुकाबला स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली से होगा। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।